प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जब भी हम अपना जीवन साथी चुनते हैं, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तो हम किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? यही ना कि वो डैशिंग होना चाहिए, है ना, स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा हो जिस पर सबकी निगाह टिक जाए, गोरा हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक फीचर है उसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए शायद अक्सर शादी के बाद या एक रिलेशनशिप में आने के बाद, जीवन साथी चुनने के बाद आप अक्सर परेशान होते हैं, रोते हैं। देखिए, पूरे 36 के 36 गुण तो दो लोगों में साथ नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, है ना, कुछ तो ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हम फिर भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में, और वो है उसका नेचर, उसका बिहेवियर, वो कैसे स्वभाव का है ना। देखिए, उसकी ब्यूटी जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, कितना भी डैशिंग, वो 4 दिन रहेगा और उसके बाद उसका जब असली चेहरा सामने आता है तो अक्सर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सो इट्स बेटर कि बाकी चीजों से ऊपर आप एक इंसान का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर देखें, और ये समझें कि वो इंसान वाकई जिंदगी में आपका साथ निभाने के लिए सही है कि नहीं। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।

अच्छा, अपन सुन रहे हैं आप, जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ, और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग के कुछ ऐसे बेहतरीन गाने जो इस मॉर्निंग की एनर्जी को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। अच्छी तरह से जीना, वैसे क्या मतलब होता है इस अच्छी तरह से जीने का आपकी नजर में? बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छी तरह से जीना यानी वेल मेंटेन्ड अपनी लाइफ को जीना, इसका मतलब है कि आपके पास ऐशो आराम होना चाहिए, आपके कम्फर्ट की हर चीज होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके नहीं हो। बल्कि देखा जाए तो हमारा ये सोचना कि ऐशो आराम से जीना, अच्छी तरह जीना होता है, ये मतलब ही गलत है। एक्चुअली अच्छी तरह जीने का मतलब है कि अगर आप किसी पत्थर पर भी बैठें तब भी आप हैप्पीनेस फील करें अपनी लाइफ में, आप खुश रहें और आप के अंदर स्ट्रेस ना। आज की जो लाइफ स्टाइल हमारी है, बहुतों के पास बहुत पैसा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह नहीं जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो लाइफ की हैप्पीनेस जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, इसे सुनिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। जी हाँ, सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ सुन रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट शो को।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपके हाथ आया मौका किसी और के हाथ चला जाता है, या फिर ये कहें कि कई बार आज की जिंदगी में ऐसा भी होता है कि कोई जबरदस्ती आपसे वो मौका छीन कर ले जाता है। बट अगर मैं कहती हूँ जब ऐसा होता है तो आपको जरूर तकलीफ होती होगी, और होनी भी चाहिए। मतलब जेन्युइन है कि यार जो चीज हमें मिलनी थी और हमें लग रहा था कई बार कि वो चीज हमारी ही है और कोई और हमसे ले जाए, तो तकलीफ तो डेफिनेटली होती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक कर अगर आप सोचें तो तकलीफ उतनी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई हाथों से छीन कर ले भी जाए तो भी अफसोस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी तकदीर में वो चीज लिखी है कि आपको मिलनी है, तो कोई आपसे लाख छीन ले, किसी और के हाथ में जाकर भी वो आपके पास वापस आ जाती है, क्योंकि वो आपकी तकदीर की लिखी चीज है और तकदीर का लिखा मिटता नहीं है। जी हाँ, जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, है ना। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई चीज जो हमें चाहिए लाइफ में वो हमारे हाथ से निकल जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। बट अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि या तो वो चीज़ आपकी थी नहीं, आपके नसीब में नहीं थी, और अगर थी तो आएगी आपके पास, लौट कर वापस आएगी। फिलहाल चलिए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: लोग आपको कुछ गलत कह देते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। और ऐसा कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये कई बार उस गुस्से में या उस स्ट्रेस में उसे समझ में नहीं आता। बट अगर कहते हैं ना कि वो एक अच्छे खानदान का है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि खानदान या उसको परवरिश कैसी मिली है ये बहुत डिपेंड करता है कि एक बंदे का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। सो अगर कभी स्ट्रेस में या कुछ प्रॉब्लम में इंसान ने आपको कुछ कह भी दिया तो जैसे ही उसे ये रियलाइज होगा कि उसने गलत किया है वो तुरंत अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होगा, वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन अगर एक इंसान का नेचर ही ये है, वो ऐसे ही बात करता है लोगों से और आपसे वो झूठ बोलता रहा है अपने नेचर को लेके, तो कभी उसे अपनी गलती रियलाइज भी नहीं होगी, उसे रियलाइज ही नहीं होगा कि उसने गलत किया है। वो उस गलती के लिए भी या उस कहे के लिए भी या उस मिसबिहेव के लिए भी आपको ही दोष देगा। और अगर आप फिर भी उसके साथ रहते हैं तो फिर गलतियां, कई बार होता है ना कि गलती हमारी है, उसका दोष हम दूसरे के सर नहीं डाल सकते। कई बार एक इंसान के साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में सब जानते हुए। एक और ट्रैक सुनिए आइए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 पर।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Wow. Yeah.

लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, मतलब मस्ट मस्ट चीज है आपकी लाइफ का, सेटिस्फेक्शन होना ही होना चाहिए। और जिनकी लाइफ में नहीं है वो जिंदगी में कुछ भी मिल जाए कभी सेटिस्फाई रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास संतुष्टि नाम की चीज है ही नहीं, वो सेटिस्फाई रह ही नहीं सकते। एक फकीर ना हमेशा उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में खुश रहता है, दुआएं देता है लोगों को। और बादशाह या किसी देश का राजा या किंग, उसका सब कुछ है उसके पास में, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइफ से सेटिस्फाई नहीं रहता। उसे कभी और कुछ चाहिए, कभी उसे क्या चाहिए यही उसे नहीं पता, है ना। तो ख्वाहिशें तो देखिए कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन लाइफ का हिस्सा जरूर होना चाहिए। और उसी सेटिस्फैक्शन के नाम ये अगला ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूँ। इस एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

वेल फ्रेंड्स, ये था एक और इट हैपेंस पर सताक्षी का आज आपके साथ साथ। आज हमने फिर से कुछ गहरी बातों को समझा, जाना और जिया, और कुछ और गहरी बातों को जानेंगे कल के सफर में। आज के सफर से, आज के इट हैपेंस से अब लेती हूँ इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: Containers for change, you can earn your empty bottles to kamai karo. ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते bisani@bisani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जेहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी ओ अपनाओ, पर साडा गल बात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनियां फरमाइशां भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवे पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल, करूंगी बातें लैके सुनो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इस नू तैयार किया है। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आं तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दराल से बने हुए। देखो कचौड़ी गली गीत ते बनारस का कनैक्शन इहदा हर कोई जानना चाहुंदा हैगा ना कि कचौड़ी गली दीआं यादां तां खैर सब दीआं इस गीत तों बाद ताज़ा हो ही गईआं, तां मैं दस दिंदी आं। देखो वाराणसी की कचौड़ी गली जो अज भी मौजूद है, एक काशी विश्वनाथ मंदिर के कोल लाहौर टोला नाम के इलाके विच स्थित एक संकरी गली हैगी है। इस गली का नाम वड्डी कहाड़ी दे कड़ाही विच तली जाण वाली मशहूर पूरी कचौड़ी दे कारण पिया हैगा। ते इह कदे स्वतंत्रता सैनानियां शिक्षावादियां ते कलाकारां दे बैठण दा ना ठिकाणा होया करदी सी। जो इत्थे चाह ते कचौड़ी दे नाल राजनीतिक संस्कृति ते चर्चा करन दे लई इकट्ठा होया करदे सी। इस तो इलावा आम तौर ते व्यंग नाल भरे भोजपुरी संगीत तो हट के इह गाणा भोजपुरी लोक गीत भी हैगा है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आज

0: ਦੀ ਸੌਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੀ ਤੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ।
1: हाँ जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। अगली जिहड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है। तो कहा जाता है कि यह कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता है। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी जो बनारस दी दाल मंडी विच रहिंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक ही।

0: हाँ जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इसकी गल करनी तो बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना उन्होंने कोई गलबात नहीं हुई पर उन्होंने लट्टू सी कौन ओ जिन्हों की गौहर जान की गल चल रही हैगी जिस इंसान नूं मिले से मैं पहला दस्या सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दे गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंगा प्यार एक दिन वह गायब हो गए। पूछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि वह मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया वह कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है इस नाल पता चलदा है कि वह अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सी।
1: डायमंड

0: बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
9: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
10: अच्छा, वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जा फिर जिस किसी संस्था जा विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
7: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
7: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
8: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
9: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
8: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
9: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
8: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
9: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
8: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
9: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
10: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।
1: हाँ जी, मुंडा साधुआं दा

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए Commonwealth Civil Marriage Celebrant Parmanand को 0411-27035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street, Wollongabba में. For weddings, engagements, renewal of vows और commitment ceremonies घर पर, hall या park में. Book with Parmanand. Manand, call now on 0411-27035. Remember, the number is 0411-27035. Ya phir email kare parmanand@optusnet.com.au per. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: मोटा सा

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो
0: creations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल।

इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers
0: for 10 cents
1: change
0: today.
1: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिनकॉइन कहंदे हां। अपने बिनकॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: अनु।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
2: ओके, तुम आ रही हो?
1: मैं जा
2: लगता रूम में रह गया।

आप सब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों, कौन सा दिन आ गया है? वेल वेडनेसडे आ गया है, मिड वीक आ गया है। ऐसे तो लेडीज डे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इस बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नहीं बताऊंगी, बट इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मिड वीक जो है, वेडनेसडे जो है, वो बीच का दिन है, मेहनत के बाद वाला और चिल करने के पहले वाला दिन। सो आपको पता ही है, पहले दो दिन बहुत ही जड़कर मेहनत हम करते हैं और उसके बाद बाकी के दो दिन हम थोड़ा रिलैक्समेंट ही और बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी रिलैक्स नहीं करते हैं। आई मीन लुक एट द एलन मस्क संडे को भी छुट्टी नहीं करते। लिटरली वो इंसान हर दिन काम करता है और नौ दस घंटे काम करता है। आप लोग बोलोगे कि इतना पैसा कमाने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है, पेट नहीं भरता क्या उस इंसान का? पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पैसे की बात ही नहीं है, अब सिर्फ एम्बिशंस की बात है। उनका एम्बिशन जो है वो है मार्स पर जाना, स्पेस में जो के जाकर अपना बेस बनाना, ह्यूमंस को मल्टी प्लानेटरी स्पीशीज बनाना। सो या ये एम्बिशन तो काम मांगता है। जी हाँ, फिर चाहे वीकेंड हो, फिर चाहे वीकडेज हो, काम तो करना पड़ेगा अगर इतने बड़े एम्बिशन हो। लेकिन हाँ, अगर हम एलन मस्क की तरह इतने ज्यादा एम्बिशियस नहीं है तो हम चिल कर सकते हैं। जी हाँ। इसी के साथ आइए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले एक हेल्दी रिचुअल के साथ, जो कि है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ। रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही अब अच्छा अच्छा फील करते हुए जरा बढ़ते हैं आगे की ओर और एक बढ़िया सा गाना आपको सुनाते हैं। और ये गाना जो है वो है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का गाना और वरुण धवन जानवी कपूर की मूवी का है ये गाना। और सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि आपको तो पता ही है जब गाना शुरू होता है पहला, तभी असली मायने में, सही मायने में प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो आइए करते हैं और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा करते हैं मौसम की बात। आपको पता है प्रोग्राम शुरू हुआ है तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक बात हम करते हैं मौसम की और दूसरी बात करते हैं हम आपकी फरमाइशों की और कैसे आप अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर मौसम क्या कह रहा है। वेल, 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है आज और 25.4 डिग्री सेल्सियस के करीब अभी है। फील आपको हो रहा है 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। भाई यही तो सर्दी है, टेम्परेचर जितना होता है उससे भी कम फील होता है क्योंकि सर्दी है भाई, सर्दी है। जी हाँ, और इसी के साथ ये तो दिन के टेम्परेचर की बात हुई। रात के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे जो कि कल के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, मतलब ठंड जो है वो कल के मुकाबले कम होगी। जी हाँ, वहीं नो चांसेस ऑफ बारिश एंड एयर क्वालिटी एकदम मजेदार। मैंने पहले ही कहा था कि आज का मौसम एकदम सनी सनी रहने वाला है तो धूप को अच्छे से सेकिएगा। जी हाँ, उस सूरज की किरणों को अपनी बॉडी में आने दीजिएगा बिकॉज दिस इज इट। यही रूल है और यही फंडा है सर्दियों से अपने आप को बचाने का और प्लस विटामिन डी को कंज्यूम करने का, राइट। इसके साथ ये तो हुई आज की बात। अगर बात करें कल की यानी कि थर्सडे की तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है और 5% चांसेस है बारिश के, विच इज ना ना ना बिल्कुल ना के बराबर। और फ्राइडे को भी वैसा ही रहेगा, सनी रहेगा विद 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और अगेन नो चांसेस ऑफ बारिश। मैंने कहा था कि सैटरडे तक आप मजेदार तरीके से इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। कौन सा मौसम? वेल, धूप वाला मौसम, खूबसूरत नीला नीला आसमान, ऐसे वाले मौसम का। लेकिन अब फिर संडे को आपको फिर से प्रिपेयर होना क्योंकि संडे से बारिश जो है वो शुरू हो सकती है और फिर उसके बाद कितने दिन चलेगी, वेल वो तो मौसम ही बता सकता है। उसकी अंगड़ाई लेने का तरीका हमारे अंगड़ाई लेने के तरीके से कुछ अलग है, सो हम नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन बाकी आपको तो पता ही है मूड जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। किसका? लेडीज का नहीं, मौसम का। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये तो था मजेदार सा गाना और ये तो थी मजेदार सी आपके लिए वेदर फॉरकास्टिंग जो कि हमारी तरफ से हुई। लेकिन अब जरा चलते हैं सीधा एक और मजेदार गाने की तरफ जो कि है बहुत ही सही, बहुत ही सही।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। गाने, जबरदस्त बात है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए तो मैं एकदम तैयार हूँ। लेकिन पहले आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बिना हमारा प्रोग्राम एकदम अधूरा है और अधूरा तो हम कोई भी काम नहीं छोड़ते, ये भी नहीं छोड़ेंगे। सो आइए, आपको करना क्या है, आपको नंबर डायल करना है, अपना फोन उठाना है, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +91 82 888 71 701। आई रिपीट, +91 82 888 71 701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और आप जब तक भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना, मतलब अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं ना, आई थिंक आपको इस गाने के बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। आई मीन यू कैन यूज इट फॉर योर प्रपोजल।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी सी अच्छी सी चीज से नहीं, बल्कि एक ऐसे मोमेंट से जो कि आपको लगेगा कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या चल रहा है। सो पैसे के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ जो कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है, और ये हुआ है जब फैंडम जो है वो क्रेजी लिमिट को क्रॉस कर जाता है और उसके बाद जो होता है। सो ऐसा ही कुछ हुआ जब चाइनीज स्टार जैंग लिंघे, सो चाइना में एक एक्टर है जिनका नाम है जैंग लिंघे एंड ही is very very popular there, and in fact I also know him because I also watch his shows. So of course he's very handsome, you know, he's very good looking and his acting is also great. Of course he is a big star there. Lekin wahan par kuch aisa hua jab log jo hai us harkat ko sunne ke baad, dekhne ke baad jo hai wo soch mein pad gaye, aur aise crazy fan moments jo hai wo India mein bhi hote aaye hain. So ek large crowd jo hai wo gather hua Chinese एक्टर जैंग लिंघे के लिए, जो कि एक जगह पर आने वाले थे, एक वेन्यू पर आने वाले थे, उनकी वहां पर वो लाइव जो है वो रहने वाले थे, वहां पर उनका जो है एक ब्रांड के लिए वो वहां पर पहुंचने वाले थे। तो लोगों को जब पता चला और खासकर लड़कियों को जब पता चला कि जैंग लिंघे आ रहे हैं, तो उन्होंने वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। जिस मॉल में वो सारा का सारा इवेंट होने वाला था वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, और वो लड़कियों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने वो ग्लास डोर ही तोड़ दिया। मतलब पूरा का पूरा ग्लास डोर उन्होंने तोड़ नहीं दिया, उनसे टूट गया, क्योंकि भीड़ जो है वो इतनी ज्यादा भारी तादाद में हो गई थी। लिटरली लड़कियां जो है उस शीशे को तोड़कर जैंग लिंघे को देखने के लिए पहुंच गई, और वहां पर जब जैंग लिंघे और उनकी टीम को ये बात पता चलती है कि लड़कियां उनको देखने के लिए पूरे सात समुंदर पार करके एकदम पूरे शीशे के दरवाजे तोड़कर उनसे मिलने पहुंच गई हैं, तो वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने अपनी जो ऑफकोर्स जो वो आने वाले थे उस इवेंट पे, उन्होंने उसे कैंसिल कर देते हैं, उसको लाइव स्ट्रीम पर वो शिफ्ट कर देते हैं। मतलब अब वो कैमराज के थ्रू जो है वो लोगों से जो है वो मिल पाएंगे, और उसके बाद जो है वो सारी की सारी चीज वो हुई। जी हाँ, मतलब आप खुद सोचिए कि क्रेजी फैन मोमेंट जो है वो क्या खतरनाक चीज है। मतलब फैंडम होना एक चीज है, लेकिन अगर ऐसा फैंडम होगा तो मुझे तो बिल्कुल सुपरस्टार नहीं बनना। मतलब आप लोग लिटरली एक मॉल का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच गए, क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हो किसी सुपरस्टार को। लाइक नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ सुपरस्टार ही इज, बट यू शुड नॉट डू इट। बट यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट इट इज। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, और खासकर ये जेंजी एरा जो चल रही है ना, इसमें लोग इतने ज्यादा क्रेजी हो गए हैं कि ऐसी ऐसी बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं। अब ये वाली जो इनकी वीडियो है ना, वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है, बहुत सारे न्यूज मीडिया टेबलॉइड ने ये शेयर किया। एंड मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि जैंग लिंघे इसके बाद खुश हुए थे या दुखी हुए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मॉल के दरवाजे की जो कीमत है उन्हें अपनी पॉकेट से देनी पड़ी होगी, क्योंकि एवेंचुअली वो उन्हीं के तो फैन थे जिन्होंने दरवाजा तोड़ दिया उनको देखने के लिए, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और क्या आपको लगता है कि ऐसे फैंडम होना चाहिए, मतलब इतना क्रेजी फैंडम होना चाहिए? जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के धर जा रही हो।
2: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, The Grand Multicultural Mela Carnival 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। Experience the magic of unity, culture and pure celebration। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स। तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense which 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which bhi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ मेटा ने भी कुछ नया किया है। जी हाँ, मेटा ने लास्ट वेडनेसडे लॉन्च किया है पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स फॉर इट्स फ्लैगशिप एप्स। जी हाँ, और ये मार्क करता है एक मेजर पुश बाय द टेक जॉइंट टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड इट्स लॉन्ग टाइम रिलायंस ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। अभी तक जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग से ही मेटा जो है वो पैसे कमाता रहा है, लेकिन अब उन्होंने सब्सक्रिप्शंस बेचना भी शुरू कर दिया है। इट्स नॉट फॉर नॉर्मल व्हाट्सएप, नॉर्मल फेसबुक और नॉर्मल इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम प्लस, फेसबुक प्लस एंड व्हाट्सएप प्लस के लिए उन्होंने ही किया है। सो रिपोर्ट्स की माने तो इंस्टाग्राम जो है प्लस और फेसबुक प्लस के लिए आपको पे करना पड़ सकता है $3.99 पर मंथ। वहीं अगर व्हाट्सएप प्लस की बात करें तो इट विल कॉस्ट यू $2.99 पर मंथ। जी हाँ, एंड I am talking about the plus version, not the normal version, क्योंकि हम ऐसे use करते हैं। But of course, जो लोग business में हैं, जो इन social media apps को business के लिए use करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि Instagram plus और Facebook plus भी जो है, वो unlock करेगा एक extra feature को, और एक extra feature को नहीं, बल्कि काफी extra features को, including better analytics, जी हाँ, story reward statistics, wider audience reach and profile customization option। ये सारी की सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है आपको इन प्लस वर्जन में, इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस में। सो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए अब आपको पे करना पड़ेगा $3.99 पर मंथ, लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपको प्लस वर्जन मिलेगा वो भी इन फीचर्स के साथ। जी हाँ, मेटा ने अब ये फाइनली कह दिया है और ये पिछले वेडनेसडे यानी कि ये जो लास्ट वेडनेसडे हुआ है अभी उस ही दिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। अब मेटा ने ठान लिया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं होगा, हम वैसे भी कमाने वाले हैं काफी। पर चलिए ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी सारे फीचर्स जो है वो मेटा दे रहा है और जो लोग सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया से अर्न करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो पे प्राइस नहीं है एंड अगेन इससे उनको काफी फायदा भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे और मेटा क्या इसमें कुछ और चेंजेस करता है या नहीं करता है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ मार्केट में बड़ी खबर, क्योंकि स्पेसएक्स हो रहा है पब्लिक पूरी तरह से। ऐसे तो कहा जा रहा है कि 1.75 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के लिए ये पिच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी जो है वो 555 मिलियन शेयर्स जो है वो मार्केट में उतारने वाली है। जी हाँ, आपने तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहता है मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स में, तो आपको कुछ हफ्ते जो है, ये जो आने वाले कुछ हफ्ते हैं, इसमें आपको मार्केट पे नजर बनाए रखनी होगी। उसके पीछे रीजन यही है कि स्पेसएक्स जो है वो उतर रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ी जो है वो खबर होने वाली है, क्योंकि ये सच में बड़ी खबर है। लेट्स बी रियल, ये सच में बड़ी खबर है, क्योंकि स्पेसएक्स जो है वो फ्यूचर है, फ्यूचर। और जब बात होती है कि कहीं क्या हम पहुंच पाएंगे दूसरे प्लैनेट पे, तो मुझे नहीं लगता कि स्पेसएक्स से आगे कोई भी कंपनी है। जो जैसे मैंने कहा कि एलन मस्क की स्पेसएक्स टारगेट कर रही है 75 बिलियन आईपीओ रेज। जी हाँ, वैसे तो 1.75 ट्रिलियन वैल्यूएशन के लिए ये पिच कर रही है, लेकिन आईपीओ रेज ये कर रही है 75 बिलियन डॉलर का। और जैसे मैंने कहा कि 555 मिलियन शेयर्स मार्केट में उतारे जाएंगे। इनफैक्ट इसका पहले से ही प्राइस जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। जी हाँ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक इन्वेस्टर्स के साथ पूरी तरह से मीटिंग नहीं हो जाती है और इसके सेकंड स्टेज जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्राइस जो है वो पब्लिक नहीं किया जाता है। बट स्पेसएक्स ने कुछ डिफरेंट यहां पर करके दिखा दिया है। जी हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वैल्यूएशन जो है वो अच्छे से पूरी कर पाएगा स्पेसएक्स, क्योंकि स्पेसएक्स इज फ्यूचर। नाउ एलन मस्क पे क्या असर पड़ेगा इसका? वेल, आपको तो पता ही है कि एलन मस्क ऑलरेडी इकलौते, मतलब वो अकेले ही ट्रिलियनर बनने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब उनकी एक कंपनी जो है वो इतना बड़ा पिच कर रही है वैल्यूएशन के लिए, तो वो कोई छोटी बात, मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये छोटी बात है, क्योंकि उनके पास स्पेसएक्स के अलावा और भी कंपनीज हैं। उनके पास न्यूरोलिंक है, उनके पास टेस्ला है, उनके पास एक्स भी है। लिटरली मतलब इस इंसान ने हर एक उस चीज में, हर एक उस प्रोजेक्ट में, हर एक उस कंपनी में अपना हाथ आजमाया है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। एंड आई हैव टू से, इन सब में मेरी फेवरेट है न्यूरोलिंक, क्योंकि जो वो न्यूरोलिंक के साथ कर रहे हैं वो सच में ह्यूमन काइंड के लिए वरदान की तरह है। जी हाँ, उसके जितने भी टेस्ट हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी कहां पर जाता है ये काम। लेकिन हाँ, अभी के लिए स्पेसएक्स के लिए बड़ी बात, और 555 मिलियन शेयर्स स्पेसएक्स उतारने वाली है मार्केट पे। इफ यू वांट टू पिच फॉर इट, बिकॉज इट्स अ आईपीओ सिचुएशन एंड यू हैव टू बी लकी फॉर दैट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन आपको शेकी शेकी फील करवाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फन गाना है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट की जिसने काफी चर्चा जो है वो बनाई हुई है इंटरनेट पर, और इंटरनेट के अलावा बहुत सारी चर्चा जो है वो मीडिया टेबलॉइड्स में इसके बारे में हो रही है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह और जोया अख्तर और फरहान अख्तर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है डॉन 3 को लेकर। सो अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि माजरा क्या है। वेल, माजरा तब शुरू होता है जब धुरंधर के बाद डॉन 3 में काम करने से मना कर देते हैं रणवीर सिंह। अब ऐसे में फरहान अख्तर कहते हैं कि डॉन 3 की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी, रणवीर सिंह वाज यू नो श्योर शॉट हीरो फॉर द मूवी, और उसके बाद उन्होंने काफी सारी प्रिपरेशंस कर ली थी, उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया था जिसमें कि 45 करोड़ के करीब पैसे खर्च हो गए थे। लेकिन एंड में रणवीर सिंह कहते हैं कि वो डॉन 3 में काम नहीं करना चाहते हैं। अब रणवीर सिंह डॉन 3 में काम क्यों नहीं करना चाहते थे, इसके बारे में कोई भी रीजन रणवीर सिंह की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि धुरंधर में काम करने के बाद वो डॉन और ऐसी टाइप की मूवीज के साथ अपने आप को ज्यादा एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो डॉन 3 नहीं करना चाहते थे। क्योंकि धुरंधर में जो उनका जो रोल है, वेल ऑफ कोर्स वो एक स्पाय का है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें भी एक एलिमेंट है कि कैसे दादागिरी है, थोड़ा सा यू नो मार धाड़ और वैसी वाली सिचुएशन है। तो धुरंधर 3 के बाद जो रणवीर सिंह है वो नहीं चाह रहे थे कि वो डॉन 3 का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने मना कर दिया उस मूवी में काम करने के लिए। लेकिन उसके बाद फरहान अख्तर और जोया अख्तर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए इस बात से, उन्होंने उन पर केस कर दिया। उन पर केस करने के साथ साथ उन पे एक और खतरनाक चीज और फतवा जारी करवा दिया गया, और वो था कि अब रणवीर सिंह के साथ कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। जी हाँ, और ये कैसे हुआ आइए जरा आपको बताते हैं। तो ये किया गया FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज की तरफ से ये फतवा जारी किया गया कि रणवीर सिंह जो है वो उनके साथ कोई भी काम नहीं करेगा। और इसके बाद रणवीर सिंह ने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, डॉन 3 में लेकिन किसी और मूवी में। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ हमें चाहिए और आपको ये काम करने को नहीं मिलेगा। मतलब फरहान अख्तर ने कह दिया कि उन्हें 45 करोड़ रुपए चाहिए रणवीर सिंह से, नहीं तो बात नहीं बनेगी। लेकिन यहां पर अब एक और व्यक्ति ने जो कि अग्रवाल है, उन्होंने फाइल कर दी है पिटीशन अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जिसने बेसिकली बैन किया है रणवीर सिंह को और बाकी लोगों को उनके साथ काम करने के लिए। उन्होंने उन पर पिटीशन जो है वो दायर कर दी है, उन्होंने उन पर केस कर दिया है कि क्या आपके पास ऐसी अथॉरिटी है भी कि आप दूसरे लोगों को रोक सकते हो किसी एक्टर के साथ काम करने के लिए। जी हाँ, ऑल्दो रणवीर सिंह ने इसमें इस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, लेकिन फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने डिक्लाइन कर दिया है ये ऑफर। वो चाह रहे हैं कि आगे तक लेकर जाया जाए इस चीज को। नाउ यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या किसी भी अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है, किसी भी ऐसी फेडरेशन और वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज या ऐसी किसी भी अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी एक्टर को काम करने से रोक सके या दूसरे लोगों को उनके साथ काम करने से रोक सके? वेल, आई थिंक दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको किसी से कोई मुद्दा है तो आप उनको सू कीजिए, ऑफकोर्स कोर्ट में आप उनके खिलाफ जो है वो केस लड़िए। अगर आपको कोई पैसे चाहिए तो वो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को काम करने से ही रोक देना और दूसरे लोगों को भी उसके साथ काम करने से रोक देना बिकॉज यू आर काइंड ऑफ नाराज, दैट इज लाइक I don't know what to say to that. You tell me about it. क्या लगता है आपको, क्या रणवीर सिंह को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रणवीर सिंह को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि धुरंधर 3 जो है उससे लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। धुरंधर 3 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है और जिस हिसाब की स्टोरी जो है वो बनाई गई है उससे बहुत सारे बॉलीवुड के लोग जो है वो नाराज है, इसलिए रणवीर सिंह को निशाना बनाया जा रहा है। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन इवन आई थिंक सो कि रणवीर सिंह को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर निशाना नहीं बनाया जा रहा होता तो सिंपल आप 45 करोड़ या 50 करोड़ रुपए रणवीर सिंह से मांग सकते थे और फरहान अख्तर जोया अख्तर ये मांग कर वो चीज खत्म कर सकते थे, लेकिन वो इसको ड्रैग कर रहे हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से। सो ऑफ कोर्स उन्हें निशाना बनाया जा रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम टीम रणवीर सिंह हियर। यू टेल मी अबाउट इट, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के जिंदा होने को लेकर क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अब पहले से ज्यादा एक्टिव है। मार्को रूबियो ने मंगलवार को सीनेट की विदेशी मामलों की समिति को बताया कि मुझे लगता है कि कुछ संकेत है कि वो किसी स्तर पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को लंबे समय से जनता के बीच नहीं देखा गया। वो अमेरिका और इसराइल के पहले हमले में घायल हुए थे, उसी हमले में उनके पिता अली खामेनेई की मौत भी हो गई थी। हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने मई की शुरुआत में दावा किया था कि उन्होंने मुस्तफा खामेनेई से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात का कोई फोटो या वीडियो जारी नहीं हुआ था, लेकिन पेजिश्कियान का कहना था कि दोनों के बीच 2.5 घंटे तक बातचीत हुई थी।

जी हाँ दोस्तों, वहीं इसराइल में भी कुछ बड़ा हुआ है। वहां पर उनकी एजेंसी मोसाद, खुफिया एजेंसी मोसाद को मिला नया चीफ। जी हाँ, रोमन गॉफमैन ने मंगलवार को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोमन गॉफमैन को मोसाद का अगला डायरेक्टर नियुक्त करने का गर्व महसूस हो रहा है। नेतन्याहू ने बाद में रोमन गॉफमैन के बारे में एक और एक्स पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि रोमन 14 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ बेलारूस से इसराइल आए थे। उन्होंने लिखा कि रोमन ने अपनी राह खुद बनाई और सभी मुश्किलों को पार किया। कई सालों की सैन्य सेवा के बाद मैंने उन्हें देश के सबसे अहम समय में अपना सैन्य सचिव चुना। नेतन्याहू ने लिखा कि आज वो आधिकारिक तौर पर मोसाद के प्रमुख बन गए हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे इसराइल की जनता की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि रोमन गॉफमैन से पहले मोसाद के चीफ डेविड बारनिया थे। उन्होंने लगभग 5 साल तक ये पद संभाला और जून 2026 में अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
11: यार, सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
13: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
13: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
14: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, वहीं अब जरा बात करते हैं फिर से अमेरिका की. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर क्या बोले अब डोनाल्ड ट्रंप? वेल, ये इंसान जब भी मुंह खोलता है कुछ खतरनाक ही बोलता है, पर आइए जरा जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये प्रेसिडेंट ना अमेरिका के, तो चला जानते हैं. सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को झूठ बताया है जिनमें ये दावा किया गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बंद हो गई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार देर रात को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत हो रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत कहां जाएगी ये कोई नहीं जानता. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ऐसी खबरें झूठी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका ने कुछ दिन पहले बात करना बंद कर दिया था. हमारे बीच बातचीत लगातार चल रही है, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और आज भी. उन्होंने लिखा कि यह बातचीत कहां जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने ईरान से कहा है कि अब समय आ गया है कि किसी भी तरह से एक समझौता करना होगा. तुम जो कर रहे हो वो 47 साल से चल रहा है और अब इसे जारी नहीं रखा जा सकता है. जी हाँ, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का.

to talk about Mr. Trump. I mean the Donald Duck. I mean the Donald Trump. I mean, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है? मतलब आप सबके पास आजादी है. अगर उसके पास आजादी है, उस इंसान के पास आजादी है हमारा इतना काम खराब करने की, तो हमारे पास भी आजादी है उनको कुछ भी बोलने की. चलिए, मतलब कहना पड़ेगा कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, he is the president of United States of America. So Donald Trump या Donald Trump, जो भी आपको कहना है. आपको मैं बता दूं कि एक और नई चीज जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है. इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा है, इस बार उनकी फिर से रेल लगने वाली है. यार आप लोग बोलोगे कि रेल लगने वाली नहीं भैया, अब क्या हो गया? वेल वेल वेल, ये इंसान जेफरी एप्स्टीन से कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, जेफरी एप्स्टीन वी लाइक ओके, आई एम नॉट गना लीव यू मिस्टर ट्रंप, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इवन इफ आई डाइड. ऑफकोर्स वो एक थियोरी है कि वो सच में मरा भी है इंसान या नहीं, वो डेड है भी या नहीं. बट इवन इफ जेफरी एप्स्टीन इज अलाइव, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ ये जो चिंगारी फेंकने का काम करता है ये जेफरी एप्स्टीन या खुद उनकी टीम ही कर देती है. क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एकदम पूरा कंबल लाते हैं, काला कंबल, और वो सारी की सारी आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि ओके नाउ आई एम फ्री. वहीं से कोई निकल कर आ जाता है, मतलब एकदम से कोई निकल कर आ जाता है और कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा तो वास्ता था एप्स्टीन के साथ. हाउ कुड यू से दैट कि मैं तो एप्स्टीन को जानता ही नहीं, एप्स्टीन ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है. और मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि एप्स्टीन जिंदा है और कहीं ना कहीं से वही ये सब करवा रहे हैं. सो जो नई चीज सरफेस हुई है वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग. जी हाँ, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी है, उसमें बोला जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप या द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब जो मैं बोलने वाली हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, कि उन्हें मिस्टर ट्रंप के साथ जेफरी एप्स्टीन ने ही मिलवाया था. अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात है, मतलब अभी थोड़े दिन पहले तो मेलानिया ट्रंप एकदम पोडियम पे आई थी और बड़े ही अच्छे से कह रही थी कि ओके यू नो व्हाट, आई डोंट नो दैट पर्सन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद जेफरी एप्स्टीन, आई नेवर मेट हिम. या दैट्स व्हाट शी सेड एंड आई क्लियरली रिमेंबर दैट. बट द थिंग इज कि यहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ और कहा जा रहा है. यहां पर कहा जा रहा है कि उनको तो मिलवाया ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेफरी एप्स्टीन ने था. अब आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप हो कैसा भी इंसान है ना, पर एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ विमेनाइजर, मतलब उनको औरतें और लेडीज बहुत ही ज्यादा पसंद है और कहीं ना कहीं वो इसीलिए जाने भी जाते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सच्ची बात है ये, जेफरी एप्स्टीन ने मिलवाया हो सकता है मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप को. क्योंकि अगर जेफरी एप्स्टीन ने नहीं मिलवाया होता तो देर वर चांसेस कि अब जो इस बार द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो कोई और होती. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कैन मैरी एनीवन, इवन राइट नाउ ही इज लाइक दैट. सो जेफरी एप्स्टीन अब नहीं है तो मुझे लगता है कि जेफरी एप्स्टीन ने किसी नई औरत को मिलवाया नहीं उनसे, तो अब वो सोच रहे होंगे कि क्या शादी करनी है, बस थोड़ा अच्छा सा प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर लेता हूँ, या वी आर गोना से नाटक, वी आर गोना से ड्रामा, बिकॉज रियलिटी तो कुछ और ही है. या यू नो दैट राइट. सो व्हाट डू यू थिंक, आपको सच में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को मिलवाने के पीछे हाथ है जेफरी एप्स्टीन का? और आपको क्या लगता है कि जेफरी एप्स्टीन डेड है भी या नहीं? सो यहाँ डू लेट मी नो योर थॉट्स. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। और ये किस्सा है एक कॉन्वर्सेशन का जो एक पिता यानी कि एक फादर अपनी डॉटर के साथ करते हैं। सो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वो घूमने गए हुए हैं और एकदम से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, यानी कि फ्लैट टायर सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, आप लोग बोलोगे कि आप कहीं ना कहीं हमें थोड़ा तो अंदाजा हो रहा है फिर क्या होगा। वेल, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं आपको आश्चर्यचकित करने वाली हूं। सो व्हाट हैपेंस देन इज कि वो फटाफट जो है अपना फोन निकालती है और अपने पिताजी को मैसेज करके बोलती है, यानी कि अपने फादर को मैसेज करके बोलती है कि पापा हमारी गाड़ी का फ्लैट टायर जो है वो हो गया है, फ्लैट टायर जैसी सिचुएशन हो गई है, तो कैन यू यू नो टेल मी हाउ टू फिक्स इट। तो जो कॉन्वर्सेशन है मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने वाली हूँ जैसे कि उस कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। सो उसमें लिखा है कि वॉक मी थ्रू हाउ टू डू इट। जी हाँ, ये डॉटर अपने फादर से पूछ रही है कि वॉक मी थ्रू हाउ टू डू इट बिकॉज वो फ्लैट टायर को फिक्स करना चाहती है। तो सामने से उसके पापा बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं, आंट यू विद जेसन? जी हाँ। तो उसके बाद उसकी डॉटर बोलती है, ये बट ही सेड ही हैज नेवर चेंज्ड अ टायर बिफोर, जस्ट वॉक मी थ्रू इट। तो उसके पिता जो आगे लिखते हैं वो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही हंसी वाला है। नाउ पीपल माइट थिंक कि ये इतना हंसी वाली चीज नहीं है, मतलब इसके लिए इतना जजी होने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक दैट इज ट्रू। मतलब यही करना चाहिए। जब वो बोलती है कि ये बट ही सेड ही हैज नेवर चेंज्ड अ टायर बिफोर, जस्ट वॉक मी थ्रू इट, तो उसके पापा बोलते हैं, ओके स्टेप वन ब्रेकअप विद जेसन। जी हाँ, अब यहाँ पर पिताजी तो सही है क्योंकि पापा सोच रहे होंगे कि द मैन कांट इवन फिक्स फ्लैट टायर, हाउ कैन ही मैनेज माई डॉटर, लाइक लिटरली ऑफकोर्स। और ये पिता पुत्री यानी कि फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है ना वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा है और हमेशा फादर लोग यही सोचते हैं कि उनकी बेटी जो है ना वो उन्हीं के पास रहे मजे से, किसी और बंदे के साथ कोई वास्ता ना रखे। एंड देर आर सो मेनी फादर्स जो कि ऐसे हैं। तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो बंदा यही सोच रहा होगा कि मतलब फ्लैट टायर तक फिक्स नहीं कर सकता, कैसे ख्याल रखेगा मेरी प्यारी प्यारी बेटी का जिसे मैंने बहुत ही नाजों से पाला हुआ है। एंड ये पूरी स्क्रीनशॉट, ये पूरा का पूरा स्टोरी किस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। नाउ यू टेल मी, आपका क्या है इसमें, प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसमें? आपको भी लगता है कि कोई नहीं, फ्लैट टायर ही है, मतलब ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो सीख सकता है इंसान, इसके लिए इतना जजी होने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रेकअप करवाने की जरूरत नहीं है? या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, ना ना ना ना, यू नो व्हाट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लैट टायर फिक्स करना एक बहुत ही बड़ा और अच्छा लाइफ स्किल है, और अगर वो नहीं आता तो फिर आप रहने दो, आप निकल सकते हो, हमारी बेटी को कोई दूसरा मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को फरारी बहुत पसंद है? आप लोग बोलोगे ये तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको फरारी पसंद नहीं होगी। मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया, थोड़ी सेंस वाली बातें कर लिया करो। चलिए ठीक है, अगर आप कह ही रहे हैं तो सेंस वाली बात कर लेते हैं और आपको बता भी देते हैं कि फरारी ने क्या कर दिखाया है। सो फरारी हैज अनवेल्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कार, अ मेजर पिवट फॉर द सुपरकार आइकन एज राइवल स्केल बैक ईवी एम्बिशंस। जी हाँ, अमिड कूलिंग डिमांड। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो आपको समझ आई गई होगी कि फरारी ने अपनी सबसे पहली ईवी कार जो है वो मार्केट में उतार दी है। आपको मैं बता दूं कि ये कटिंग एज टेक सुपरकार परफॉर्मेंस और 500 किलोमीटर ऑफ रेंज प्रॉमिस कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो ये फरारी जो है आपको बहुत कुछ प्रॉमिस कर रही है, लेकिन क्या ये अपने प्रॉमिसेस पर सही उतरेगी, खरी उतरेगी? वेल, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं फरारी ले लूंगी। सो आप लोग ये विश कीजिए कि निविया शर्मा तुम जल्दी जल्दी फरारी ले लो, सो दैट हमें पता चल जाएगी एग्जैक्टली फरारी जो प्रॉमिस कर रही है वो सच में पूरा कर रही है या नहीं। और आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी आरजे निविया के लिए फरारी। आई मीन यू कैन डू दैट फॉर मी, राइट? आई मीन इतना तो बनता है। जी हाँ, सो यहाँ पर जो प्राइस रेंज रहने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है 640,000 डॉलर। जी हाँ, and I'm talking about the American dollar. So $640,000 से फरारी की ये ईवी कार जो है वो आने वाली है मार्केट में। और ये फरारी की फर्स्ट 5-seat मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है विद डिजाइन इनपुट फ्रॉम जॉनी आईवीज लव फ्रॉम स्टूडियो। जी हाँ, ये टारगेट करने के लिए भी है ताकि फैमिलीज को टारगेट किया जा सके, क्योंकि जब भी फरारी बनती है और जब भी फरारी को उतारा जाता है और जितनी भी फरारीज आपने देखी, कितनी भी अच्छी हो, बैठ तो दो ही लोग सकते हैं। एक इंडियन तो यही सोचता है कि ओके, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, दो लोग ही बैठ सकते हैं, मतलब हमारा क्या होगा, बाकी की फैमिली को कैसे लेकर जाएंगे। सो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो फरारी ने इस बात का सॉल्यूशन निकाल दिया। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम्हें फरारी ने पैसे दिए हैं क्या, इतने अच्छे से पिच कर रही हो? वेल, मुझे फरारी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि फरारी अगर मुझे पैसे के बजाय फरारी ही दे दे तब बात बन जाए। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन आपको डांस करने पर मजबूर कर देगा।

जी हाँ दोस्तों, वही साइंस ने प्रूव कर दिया है कि कपल्स जो देर रात में बात करते हैं, आधी रात में बातें करते हैं और आधी रात तक बातें करते हैं, वो ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। उनका जो कनेक्शन है वो ज्यादा डीप होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हमारा ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है व्हेन इट गेट्स टायर्ड। जी हाँ, सो देयर इज अ रीजन योर डीपेस्ट कॉन्वर्सेशंस हैपन आफ्टर मिडनाइट, एंड व्हाट्स द रीजन, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। व्हेन यू आर टायर्ड, योर ब्रेन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जी हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, दैट द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड गेसिंग एवरीथिंग, शट्स डाउन। जी हाँ, वो पूरी तरह से शट डाउन कर जाता है। आपका गार्ड जो है वो आप ड्रॉप कर देते हो। जो वॉल्स होती हैं आपने लगाई होती हैं, बनाई होती हैं ऐसे नॉर्मली, वो भी एकदम से गिर जाती हैं, एंड सडनली यू आर सेइंग थिंग्स यू बीन होल्डिंग बैक ऑल डे। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें इसीलिए रात को होती हैं। वेल ऑफकोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजों को सेकेंड गेस करने के लिए और हमारे सोच विचार करने वाली चीजों के लिए, वो एकदम से शट डाउन हो जाता है। और उसके बाद जो है आप बड़ी ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी शुरू कर देते हो, मतलब ऐसी कॉन्वर्सेशन जो कि आप ऐसे नॉर्मली नहीं करते हो। और आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, मतलब ये आधी रात को नहीं, जब हम कुछ पी लेते हैं तब भी होता है। वेल, मैं हमेशा कहती हूँ पीना इज बैड फॉर योर हेल्थ, बट द थिंग इज कि यहाँ पर ऐसी कॉन्वर्सेशन वैसे वाले टाइम पे भी आपको देखने को मिलती है। सो साइंटिस्ट जो है वो बोलते हैं इसको बेड टाइम वल्नरेबिलिटी इफेक्ट। जी हाँ, क्या बोलते हैं, बेड टाइम वल्नरेबिलिटी इफेक्ट। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपका फॉल कर जाता है रात को, डिस्ट्रैक्शंस जो है वो फेड हो जाती हैं, एंड व्हाट्स लेफ्ट इज जस्ट टू पीपल कंप्लीटली प्रेजेंट विद ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन कि आपको अपने पार्टनर से रात में बात करनी चाहिए। जी हाँ, वो रात वाली जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो आप हमेशा याद रखते हो, लाइक द 2 AM कॉन्वर्सेशंस, यू आर गना, यू विल रिमेम्बर एवरी डे, ऑल फॉर एवर। जी हाँ, आपको हमेशा जो है वो याद रहने वाली है। सो अगेन, ये कॉन्वर्सेशन से बचे ना, और जरूर कीजिए। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, कभी तुम कहती हो जल्दी सोया करो, हमारे लिए जल्दी सोना अच्छा होता है, और कभी तुम कहती हो कि हमें 2 AM कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, मतलब तुम अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो। पहले तुम सोच लो, ठान लो, और पहले अच्छे से सुनिश्चित कर लो तुम चाहती क्या हो। वेल, मैं ये कहूंगी कि बाकी सारे टाइम आपको सोने की जरूरत है जल्दी, बिकॉज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, बट यहां पर ये 2 AM कॉन्वर्सेशन, या फिर 2 AM से पहले 1 AM की भी चल सकती है, 12 AM की भी चल सकती है। सो जरूर बातचीत कीजिए अपने पार्टनर से थोड़ी देर, 5-10 मिनट की ही कॉन्वर्सेशन, बट जरूर कीजिए, बिकॉज देन यू आर गोना सी द डिफरेंस। आपको लगेगा पता कि कितना करीब हम एक दूसरे के फील कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, डोंट वरी अबाउट अस, हम ऐसे भी करीब हैं, तुम अपनी टेंशन लो। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं,

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में एंटर करने का। वेल, हम ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। आपने जो गाना सुना, तू मेरी जिंदगी है, क्या परफेक्ट सॉन्ग है वो। अब आपने इस गाने के बहुत सारे वर्जन सुने होंगे, बट दैट इज द OG वर्जन। जी हाँ, मतलब वो सबसे पहला वर्जन है तबस्सुम खानम की आवाज में, और वो वर्जन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो आप मुझे बताइए कि आपको वो गाना पसंद आया, और एंट्री हम कर चुके थे उसी गाने के साथ, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सो इस सेगमेंट में आपकी पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइशें होंगी, हमारी तरफ से आपके लिए पुराने गाने होंगे, और सिर्फ पुराने गाने ही होंगे, और साथ में होंगे किस्से उन सितारों के जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं और हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जो कि है हमारा फेवरेट। और रफी साहब की आवाज के अलावा किसी चीज से शुरुआत हो, किसी चीज की शुरुआत हो, ऐसा हो सकता है क्या?

भाई चांद की बात जब भी होती है ना, दिल करता है कि उसे निहारते रहो, दिल करता है उसकी खूबसूरती के बारे में बातें करते रहो। सो चांद से रिलेटेड जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो मतलब खूबसूरत हैं। जिन्होंने गाया है चांद के बारे में वो तो खुद ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, सो रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गाना आपने सुना, और इसी के साथ अब बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है, क्योंकि बर्थडे विश हम करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री को। जी हाँ, और मैं सच में कह रही हूँ, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उस वक्त तो उन्होंने कहर मचा दिया था अपनी आंखों की खूबसूरती से, और अपनी खूबसूरती से ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सारिका। जी हाँ, सो आज है जन्मदिन सारिका का। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से आपके लिए, और हम यही कहेंगे कि ये खूबसूरत सी जो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपने अपने फैंस को एंटरटेन किया है, आपने अपने फैंस के दिलों में इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, इसे हमेशा जो है ये ऐसी ही बनी रहे, आप हेल्दी रहें, आपकी वेल्थ भी जो है वो बढ़ती रहे, और ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हो, और डेफिनेटली आपकी खूबसूरती के कायल हम हैं, और ये बात में कोई भी शक नहीं है। सो ये है जन्मदिन सारिका जी का आज, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से दीवाना बना दिया था सबको, अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं वो भी आपको दीवाना बनाने वाला है, क्योंकि गाने का नाम ही है ये मेरा दीवानापन है। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कौन से गाने के बारे में बात हो रही है।

0: अगेन खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना। दोस्तों एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं जो कि अगेन है बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स के बारे में। और ऑफ कोर्स हमारा ये सेगमेंट चल रहा है तो किस्से के बिना, किसी पुराने किस्से के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है ये, राइट? सो ये किस्सा है राजकुमार और दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ साहब और राजकुमार। राजकुमार तो वही है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जानी। हाँ हाँ बिल्कुल वही। सो ऐसा कहा जाता है कि पैगाम पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, दिलीप कुमार के बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे राजकुमार, और दिलीप कुमार को एक थप्पड़ मारना था। अब जब वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनसे छेड़खानी करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा जोर से थप्पड़ मार लेते हैं, और यहाँ पर उसके टेक भी 1 से 2 लिए जाते हैं। अब ऐसे में सबको पता था कि राजकुमार धीरे थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जोर से मारना चूज किया क्योंकि वो वहां पर टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे दिलीप कुमार साहब की। अब अगर कहा जाए कि दिलीप कुमार क्या उस वक्त बड़े स्टार नहीं थे, 1968 की बात हो रही है, वेल ऑफ कोर्स दिलीप कुमार उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे। फिर क्या है, दिलीप साहब ने कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, बस वो सेट छोड़कर चले गए और उन्होंने कह दिया कि आज के बाद मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। और ये हुआ भी, उन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। और राजकुमार भी तो एटीट्यूड वाले थे, उन्होंने कहा कि यूसुफ जैसे 100 आते हैं वैसा वाले एटीट्यूड के साथ उन्होंने भी कहा कि मुझे भी इसके साथ काम नहीं करना। लेकिन फिर सुभाष घई ने सौदागर बनाने की सोची। अब जब सुभाष घई सौदागर बनाने की सोच रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इसमें तो 2 बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स को लेना पड़ेगा क्योंकि बात नहीं बनेगी, कहानी की डिमांड ही वो है। फिर क्या था, सबसे पहले वो गए राजकुमार के पास नहीं बल्कि दिलीप साहब के पास। दिलीप साहब को बहुत ही अच्छी लगती है पिक्चर की कहानी, वो सुभाष घई को कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इसमें काम करने के लिए तैयार हूँ। जब सुभाष घई घर से बाहर निकलते हैं और वो घर से बाहर निकलते निकलते राजकुमार साहब नहीं दिलीप साहब उनको सी ऑफ करने बाहर आते हैं, तो वो कहते हैं बाकी सब तो ठीक है सुभाष, पर ये तो बताओ कि मेरे साथ दोस्त का कैरेक्टर प्ले कौन कर रहा है। तो सुभाष गई फटाफट अपना शीशा ऊपर करते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं और वो कहते हैं राजकुमार। अब वो कुछ सुनते ही नहीं है कि सामने से दिलीप साहब बोलने के वाले होते हैं, क्योंकि सबको पता था कि उन दोनों के बीच तो बिल्कुल नहीं बनती है, और अगर उन दोनों के बीच बनती बिल्कुल भी नहीं है तो सुभाष गई ने तो ये पंगा ले लिया। और उनको बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग थे वो कह भी रहे थे कि तुम क्यों पड़े हो पीछे, मतलब ये तो तुम पंगेबाजी कर रहे हो, तुमको पता है दोनों के बीच बहुत ही बड़ी रंजिश है, दुश्मनी है, कैसे करेंगे दोनों काम। बस फिर क्या था, सुभाष गई बहुत ही चलाकी से कहते हैं राजकुमार, अपना शीशा ऊपर करते हैं और वहां से फटाफट 9-2-11 हो जाते हैं। 4-5 दिन तक वो दिलीप साहब से मिलते भी नहीं है, कॉल पे बात भी नहीं करते, और फिर जाते हैं वो सीधा राजकुमार के घर पर। अब राजकुमार साहब का स्कॉच प्रेम पूरी इंडस्ट्री में फेमस था। वो बैठते हैं अपने स्कॉच का गिलास लेकर और बड़े ही अच्छे से सुभाष गई उन्हें कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी कहानी है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि बाकी सब तो ठीक है पर मेरे दोस्त का किरदार कौन निभाएगा। तो सामने से सुभाष घई बोलते हैं अब आपके साथ कोई बड़ा ही एक्टर, लेजेंडरी एक्टर ही लेंगे ना, मतलब ऐसे छोटा मोटा एक्टर तो काम नहीं कर पाएगा आपके सामने, राइट? सो हमने दिलीप साहब को लिया है। अब ये सुनकर राजकुमार साहब बड़े ही अच्छे से देखते हैं, जानी बात तो सही है, मैं अगर अपने बाद किसी को बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ तो वो यूसुफ ही है, वो दिलीप ही है, सो मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, फिर क्या था, सुभाष घई ने दोनों को मना लिया, दोनों के साथ पिक्चर कर ली, पिक्चर सुपर डुपर हिट भी हो गई और ऐसे ही सालों पुरानी रंजिश यानी कि दुश्मनी भी खत्म हो गई। सो ये थी ये प्यारी सी कहानी और दिलचस्प सा किस्सा। इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा बहुत लंबी बात हो गई, राइट? वेल ऑफ कोर्स लंबी बात हो गई है, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाएंगे जो कि एक फरमाइशी गीत है, और इसे फरमाइश किया है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी ने। गाने का नाम है काहे को बुलाया मुझे बलमा। अरे वो तो बलमा ही बता सकता है क्योंकि मैं बताऊंगी तो बात नहीं बनेगी। सुनते हैं इसको। थैंक यू सो मच विशाल जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए। ये रहा आपका ये जबरदस्त सा गाना।
1: हाय हाय काहे को बुलाया मुझे

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि घड़ी कर चुकी है इशारा और कह रही है कि निव्या शर्मा अब तुम्हें होगा जाना, क्योंकि हमको करना है और भी काम और खाना है खाना। आप लोग बोलोगे एक्सक्यूज मी, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा इतनी फटीचर शायरी तुम ही कर सकती हो, सो ओके ओके ठीक है, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नहीं करूंगी शायरी, बट मैं कहने की कोशिश यही कर रही हूँ कि अब जाना होगा मुझे, लेकिन कल मैं वापस आऊंगी, इंजॉय आपको करवाऊंगी, आपका स्ट्रेस भी हम दूर करेंगे, यहाँ पर एक मजेदार सा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज के लिए आपको क्या करना है, वेल यमी टेस्टी डिनर करना है और मजे से रहना है, प्यार से रहना है, खुशी से रहना है, दैट्स अबाउट इट। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है गाना, और इसका नाम है तेरी आंखों के सिवा। बाय, सी यू टाटा।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। विक्टोरिया पार्क में 2032 ओलंपिक स्टेडियम का काम शुरू। जी हां, ब्रिस्बेन के मशहूर विक्टोरिया पार्क में $3.8 बिलियन की लागत से बनने वाले 63,000 सीटों वाले भव्य ओलंपिक स्टेडियम का शुरुआती काम शुरू हो गया है। वहीं स्टेडियम निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज है। हालांकि स्टेडियम के निर्माण को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय और पर्यावरण एक्टिविस्ट इस पार्क को बचाने के लिए कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ शहर में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के रूट बदले। विक्टोरिया पार्क में काम शुरू होने की वजह से ब्रिस्बेन के निवासियों के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। पार्क के पास की गिलक्रिस्ट एवेन्यू को ट्रैफिक और पार्किंग के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन लायंस के लिए नई इंजरी टेंशन। ब्रिस्बेन की पसंदीदा फुटबॉल टीम ब्रिस्बेन लायंस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम के स्टार डिफेंडर किडियन कॉलमैन चोट के कारण अगले 6 हफ्तों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं विल मैक्लाकन का VFL यानी कि VFL मैच में धमाका। इंजरी की चिंताओं के बीच ब्रिस्बेन लायंस की जूनियर यानी कि VFL टीम से एक बेहद शानदार खबर आई है। युवा खिलाड़ी विल मैक्लाकन ने फ्रैंकस्टन के खिलाफ हुए मैच में अकेले 7 गोल दागकर इतिहास रच दिया। वहीं नया ओलंपिक स्टेडियम बनेगा क्रिकेट का नया घर। क्रिकेट लवर्स के लिए ब्रिस्बेन से एक और मजेदार अपडेट। क्वींसलैंड क्रिकेट के सीईओ टेरी स्वेंसन ने कहा कि जो नया ओलंपिक स्टेडियम बन रहा है वो 2032 के बाद सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक बड़ा हब बनने वाला है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले CBSE का नया साइबर अटैक अलर्ट। पहली खबर हमारी पढ़ाई लिखाई की दुनिया से है। CBSE की री इवेल्युएशन पोर्टल पर कुछ हैकर्स ने साइबर अटैक करने की कोशिश की है। बोर्ड ने साफ किया है कि कुछ मेलिशियस एक्टर्स ने रिजल्ट चेकिंग प्रोसेस को धीमा करने के लिए सिस्टम को निशाना बनाया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के नए स्पिन बॉलिंग कोच। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, BCCI ने पूर्व ऑलराउंडर साईराज बहुतुले को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला कानूनी मामले पर सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जाति से जुड़े पुराने कानूनी अधिकार या रिजर्वेशन के फायदे उसी रूप में जारी नहीं रखे जा सकते। वहीं गुजरात में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। नारकोटिक्स और पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात में एक बहुत बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ जहां से लोग 75 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है। वहीं अहमदाबाद में पुलों के नीचे बनेंगे स्पोर्ट्स सेंटर। अहमदाबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वहां की नगर निगम ने शहर में के 9 बड़े ब्रिजेस यानी पुलों के नीचे खाली पड़ी जगहों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर्स में बदलने का फैसला लिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका ईरान पीस डील पर सस्पेंस। अब रुख करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर की तरफ जो कि है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की। इसके लिए फाइनल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस पर अपना आखिरी जवाब नहीं भेजा है। वहीं ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर अमेरिकी पाबंदी। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ इजरायल सीमा पर फिर तनाव। मिडल ईस्ट से ही एक और खबर है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने लेबनान की तरफ से दागी गई 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। वहीं मुश्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जो पिछले दिनों हुए हमले में घायल हो गए थे और काफी समय से जनता के सामने नहीं आए हैं वो पूरी तरह से जिंदा हैं। वहीं अफगान शरणार्थियों पर अमेरिका में बहस। वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका के उन 1100 अफगान नागरिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर बातचीत चल रही है जिन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की मदद की थी। इसी के साथ क्रिस्टोफर नॉलन की नई फिल्म का वीडियो लीक। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की आने वाली मेगा बजट फिल्म द ऑडिसी का एक बिहाइंड द सीन वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है और इसके बाद इस पर काफी चर्चा हो रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं कुछ खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्टैनली कप फाइनल की धमाकेदार शुरुआत। स्पोर्ट्स की दुनिया में इस वक्त आइस हॉकी का बुखार चढ़ा हुआ है। स्टैनली कप फाइनल के पहले मुकाबले में वेगस गोल्डन नाइट्स और कैरोलिना हरिकेन्स के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बास्केटबॉल FIBA 3x3 वर्ल्ड कप की शुरुआत वार्सो में खेले जा रहे फीबा 3x3 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के पहले ही दिन बड़े उलटफेर देखने को मिले। अमेरिकी महिला टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पहले हंगरी को 18-15 से और फिर ऑस्ट्रेलिया को 21-18 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी अजेय बढ़त बना ली है। वहीं अमेरिका का अंडर 18 बास्केटबॉल में जलवा। फीबा अंडर 18 मेंस अमेरिका कप में अमेरिकी टीम ने अपना दबदबा कायम रखा है। उन्होंने अपने हालिया मुकाबले में मेक्सिको की टीम को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। वहीं फुटबॉल लेजेंड रॉबर्टो बेजियो की चर्चा। फुटबॉल की दुनिया में 1994 के लेजेंड खिलाड़ी रॉबर्टो बेजियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास कैंपेन चल रहा है। फैंस उनके पुराने जादुई पलों को याद कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701
1: लीजिए परमानंद से एक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह के पिता जनरल सिंह के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलैंड पार्क में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
6: 0400-234-235.
7: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
8: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
9: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
10: Hi, this is Amitabh Bachchan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
13: Hi, this is Salman Khan.
14: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
15: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
16: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
17: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
18: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
19: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनेहा क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनु।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

सत श्रीकाल जी, मैं हाँ संदेश चौलक शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रसवानी 101.9 ते जुड़ा हो चुके हैं हुण तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। अमरीका तो एक बेहद वड्डी खबर सामने आई है जिथे नशा तस्करी के गंभीर मामले में एक पंजाबी मूल के ट्रक ड्राइवर नूं अदालत वल्लों 75 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्टां मुताबिक दोषी ड्राइवर की पछाण जुबनप्रीत सिंह 30 साल वजों हुई है, जिस नूं अमरीकी इतिहास दीआं सब तो वड्डीआं कोकीन बरामदगियां विचों एक मामले में दोषी करार दिता गया। यह मामला उस वेले सामने आया जदों इलिनोए स्टेट पुलिस ने इंटरस्टेट 74 के रूटीन चैकिंग दौरान जुबनप्रीत सिंह के कमर्शियल ट्रेलर नूं रोकिया। चैकिंग दौरान जदों पुलिस ने स्निफिंग डॉग ने शक जताया तां पुलिस ने ट्रक के पिछले हिस्से की तलाशी ली। जांच टीम ने ट्रक के अंदरों काले रंग के चार वड्डे कूड़े बैग मिले, जिन्हां विच बेहद चलाकी नाल नशीला पदार्थ छुपाया होया सी। जदों इन्हां बैगां की जांच की गई तां इन्हां विचों 106 किलोग्राम कोकीन निकली। अमरीकी जांच एजेंसियां इस कोकीन की कौमांतरी बाजार विच कीमत लगभग 10.6 मिलियन अमरीकी डॉलर दस रही ने, जो भारतीय करंसी मुताबिक 90 करोड़ रूपये तो भी वध बनती है। उधर अमरीका की ईरान नाल जारी जंग कारण जिथे दुनिया भर विच तड़थली मची हुई है, उत्थे ही अमरीका वल्लों अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियां विच इक वड्डा बदलाव करन दी योजना बनाई जा रही है, जिसका सीधा असर भारत समेत दुनिया के 60 देशों ते पै सकता है। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत सने दुनिया के 54 देशों तो आने वाले समान ते 12.5% वाधू टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिता है। अमरीका का दोष है कि देश बंधुआ या जबरदस्ती मजदूरी राही तैयार किए गए समान की आमद ते रोक लगाने विच असफल रहे हन। यह कार्रवाई USTR वालों दुनिया दियां 60 अर्थव्यवस्थावां खिलाफ चलाई गई जांच तो बाद अमल विच लियांदी जा रही है। अमरीकी व्यापार अंबेसडर ने एक अधिकारित बयान जारी करते कहा है कि साढ़े सब तो महत्वपूर्ण व्यापारक भाईवाला वालों बंधुआ मजदूरी नाल बने समान की दरामद नूं ना रोकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कारण अमरीकी मजदूरां नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते असमान मुकाबलेबाजी का सामना करना पैंदा है। असीं इस असमानता नूं हुण होर बर्दाश्त नहीं करांगे। उधर करदे पंजाब दे वल जिथे जुगो जुग अटल तंता ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी भी कानून या बंदिश विच नहीं आउंदे ते ना ही कोई सरकार अजिही हरकत करे, इन्हां विचारां दा प्रगटावा सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने पिंड म्याणी विखे पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कहा। इस मौके उन्हां पंजाब सरकार वल्लों बनाए गए सत्कार कानून दा विरोध करदे होए कहा कि सरकार वल्लों इह कानून श्री अकाल तख्त साहिब पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते पंथक धिरां नूं विश्वास विच लए बगैर ही आया है, जो कि पंथ नूं प्रवान नहीं है। उधर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्पलॉयज ने अदाकार रणवीर सिंह विरुद्ध जारी किए गए असहयोग निर्देश यानी कि बैन तुरंत प्रभाव नाल वापस लैण दा ऐलान किया है। यह फैसला अदाकार वल्लों भेजे गए कानूनी नोटिस अते इंडस्ट्री दीआं प्रमुख संस्थावां दे दखल तों बाद लिया गया है। FWICE दे प्रधान ने दस्सिया है कि इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसीएशन अते प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अते CINTAA दी बेनती अते दखल तों बाद फैसला लिया गया है। उधर पंजाब भाजपा के नवे नियुक्त प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने चंडीगढ़ के सैक्टर 37 स्थित भारत पार्टी दफ्तर विखे अपना अहुदा संभाल लिया है। इस मौके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग, राज सभा मैंबर सतनाम सिंह संधू अते पंजाब भाजपा के साबका प्रधान सुनील जाखड़ अते अश्विनी शर्मा सने वड्डी गिणती विच भाजपा आगू मौजूद रहे। केवल सिंह ढिल्लों ने अपना अहुदा धार्मिक रीति रिवाजां नाल गुरु तों आशीर्वाद प्राप्त कर संभाल लिया है। केवल सिंह ढिल्लों ने इस मौके संबोधन करदिआं कहा है कि मेरे तो पहला सुनील जाखड़ सने जिन्हें भी पंजाब भाजपा के प्रधान रहे हैं उन्होंने बहुत ही वधिया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिस कारण भाजपा बहुत मजबूत हो चुकी है। उधर खाड़ी खेतर विच तनाव वधदा जा रहा है। ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे ते एक वड्डा ड्रोन हमला किया। कुवैत सरकार ने जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि इस हमले तो बाद सारी व्यापारक उडाणा नूं तुरंत प्रभाव नाल मुअत्तल कर दिता गया है। कुवैत दे रक्षा मंत्रालय दे बुलारे ने दस्सिया है कि कई दुश्मन ड्रोना ने हवाई अड्डे दे यात्री इमारत नूं सीधा निशाना बनाया। इस हमले विच हवाई अड्डे दी इमारत नूं भारी नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति दी मौत हो गई ते कई लोग गंभीर रूप दे नाल जख्मी भी हो गए ने। ड्रोन हमला अजिहे समय विच होया जदों मंगलवार देर रात ईरान अते अमरीका ने एक दूजे ते जबरदस्त मिसाइल हमले किए। अमरीकी सेना अनुसार उन्होंने कुवैत अते बहरीन वल दागियां गईयां ईरानी मिसाइलां दे जवाब विच ईरान दे एक फौजी स्टेशन नूं निशाना बना के जवाबी कार्रवाई की।
ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ ਬੰਸਰ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: a number, Rahul, it's a statement. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
5: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Mixing in the house.

वेलकम आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसे बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी अर्चे संदेश वालक दे नाल सी जुड़ चुके हो, वन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हैगा है जिहड़ा उह शुरू हो चुके है दी। ते असीं इस वेले दे दौरान ढेर सारे गीत सुनने, गल्लां वी करनियां ने ते नालों नाल तुहानूं जानकारी वी दिंदे रहना कि कुछ दुनिया भर दे विच चल रिहा हैगा। हर चीज मिलेगी तुहानूं जानन दे लई। तुसीं बस की करना है, तुसीं बस जुड़ना है, अपने फोन दा इस्तेमाल करना हैगा जो तुसीं अक्सर करने रहते हो। रेडियो बिरसवाणी 101.1 साडा फेसबुक पेज है, जिथे बिरसवाणी और bisawani.com साडी ईमेल आई टी है। जरिए जेड़ा अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल तुसीं जुड़ो, अपनियां फरमाइशां भेजो, दिल दीआं गल्लां करो। मैं हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समां इहनां सोहणे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी आयनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टर दे फिल्म मेकर फरहान अख्तर है ने जेड़े अजकल काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ने। फरहान अख्तर दी डॉन 3 काफी ज्यादा सुर्खियां विच है ते डॉन 3 तो अचानक बाहर होने तो बाद ना रणवीर सिंह होर ज्यादा सुर्खियां दे विच आ गए क्योंकि वो हमेशा ही सुर्खियां च रहंदे ने, पर उन्हां दीआं इस वार सुर्खियां मुश्किलां करके क्योंकि मुश्किलां वधदीआं दिख रहीआं ने। हाल ही विच फैडरेशन ऑफ वैस्टर्न इंडिया सिने इंप्लॉयर्स ने उन्हां दे खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन डायरेक्टिव जारी किया है, मतलब के फेडरेशन दे डायरेक्टर्स कैमरामैन अते क्रू मैंबर्स हुण रणवीर सिंह दे नाल काम नहीं करनगे। इस वड्डे विवाद दे विचकार ना हुण उन्हां दीआं ओह फिल्मां दी चर्चा तेज हो गई है जिन्हां नूं रणवीर सिंह ने रिजेक्ट कर दिता है। उन्हां बारे दस्सदी आं एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
6: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
8: प्रिया, next month मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
8: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा. फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
8: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण जिहड़ी फिल्म मैं दसन जा रही हां जिसनूं रणवीर सिंह ने रिजैक्ट किया हैगा वह तुसीं मतलब कहोगे कि शायद ठीक है रिजैक्ट करके क्योंकि वो फिल्म जेडे एक्टर ने की ना उससे बहुत सूट की सी। नाम है जी कबीर सिंह। शाहिद कपूर दे करियर दी सब तो वड्डी हिट कबीर सिंह भी पहला रणवीर सिंह दी झोली विच डिगण वाली सी। डायरेक्टर संदीप रेडीवांगा इस दे लीड रोल दे लई रणवीर दे कोल गए सी पर उस समय रणवीर नूं इस किरदार दा पागलपन गुस्सा ते फिल्म दा डाकू माहौल थोड़ा ज्यादा लग्या। उन्हां नूं लग्या कि उन्हां दी इमेज ते पै सकता है इसलिए उन्होंने मना कर दिता ते ए फिल्म चली गई जी शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर ते क्यारा अडवाणी की जोड़ी इस फिल्म के नाल इन्नी हिट हुई ना कि हर कोई इन्हों हुण बहुत ज्यादा प्यार करता है।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270355. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें परमानंद optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: Yaar, saag vich dam nahi hai. Bilkul maza nahi aaya.
5: Kisi din ghar aana, asli desi ghee mein saag banakar khilaunga tumhe.
4: Kahan yaar, aajkal asli desi ghee milte kahan hai?
5: Kis duniya mein ho bhai? Quality food service mein triple refined pure desi ghee milte hain. Australia mein hi bante hain, 100% pure क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
3: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपनी चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आर जे संदेश अलग दिन तुसी बने हो। देखो साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एस शंकर अपनी कल्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म अनिने द हिंदी रीमेक रणवीर सिंह दे नाल बनाउण दी प्लानिंग कर रहे सी। अनिने बहुत ही सोहनी फिल्म हैगी है, तुसी गूगल करके देख लो। रणवीर खुद भी इस दमदार रोल नू लैके बेहद एक्साइटेड सी। फिल्म दीयां तैयारियां शुरू हो चुकियां सी पर तद फिल्म नू लैके कानूनी पड़च्चे शुरू हो गए जिस वजह दे नाल अगे वधी नहीं पाई ते आखिरकार मेकर्स नू ए वड्डा प्रोजेक्ट बंद ही करना पिया। अपरिचित याद है ना थोनू? याद कर लो दोबारा, याद आ जानी बहुत ही ज्यादा शानदार फिल्म है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

हां जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.01 ते चर्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म हैगी जेडी वो भी बहुत खास हैगी है, तो बहुत ही ज्यादा सोनी हैगी है। उस दे विच भी लगता है कि शायद जिस एक्टर ने की उस बिल्कुल सूट कर रहे हैं। फरहान अख्तर की ही गल कर रही है, तो फरहान अख्तर की सुपर हिट फिल्म भाग मिल्खा भाग की गल हो रही है। थी भाग मिल्खा भाग दे लई वी रणवीर सिंह मेकर्स की पहली पसंद सी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा दी स्ट्रेंजर इन द मिरर विच खुलासा किया है कि रणवीर ने इस रोल दे लई ऑडिशन दिता सी, उन्होंने कहानी बेहद पसंद आई सी, पर बाद विच ना कुछ कारण करके उन्होंने इस कल्ट फिल्म तो मना कर दिता गया। बाद विच फरहान अख्तर ने ए रोल निभाया सीगा ते उन्होंने मना किया, फरहान दी झोली च फिल्म गई हैगी ते फरहान अख्तर ने इस किरदार दे नाल पूरी इमानदारी कीती।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
6: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट sections पर। Don't miss it.
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के धर जा रही हो।
5: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

11th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110 ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है फिजी स्टाइल बारबेक्यू स्पाइसी डक करी यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service. Website www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

क्योंकि वीरों के भी शिरोमणि सरदार खड़े थे, गुरु द्रोण दादा भीष्म कृपाचार्य खड़े थे, लड़ने के लिए सब कोई तैयार खड़े थे, पर रणभूमि में तो अपने परिवार खड़े थे। इन सब को देख अर्जुन का दिल दहल गया, फिर हाय उसके मुंह से उस दम निकल गया, इन गुरुजनों पे कैसे मैं वार करूंगा, किस किस का समर भूमि में संहार करूंगा, कांधे से तीर तरकश गांडीव छोड़कर, कहने लगा मोहन से वो हाथ जोड़कर, प्रभु ये राजपाट वैभव मुझको न चाहिए, इस कुल कलंक से प्रभु मुझको बचाइए, ये जर जमीन मुझको सुवर्ण न चाहिए, जो कुल का नाश

जाओगे तुम जो समर भूमि से, सारी दुनिया हंसेगी तेरे नाम पर। लौट जाओगे घर तुम समर भूमि से, सारी दुनिया

जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी तुमसे लड़ने को तैयार है। जिसको कहता है, अरे जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी

पर जग में सम्राट कहलाएगा, मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा। जीत कर जग में तू सम्राट कहलाएगा और मर गया रण

साथ जब तक हूँ मैं तू हार सकता नहीं, कोई रण में तुम्हें मार सकता नहीं। साथ जब तक हूँ मैं तेरे तू हार सकता नहीं, और कोई रण

कर कर्म शर्मा ही प्रधान है। अर्जुन कर्म कर कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्ण भगवान है। कर्म कर कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्म भगवान है।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदलता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी।

एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में, और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोच कर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर हैं क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: नमस्कार ब्रिस्बेन, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, अदाब मेरे प्यारे प्यारे लवली श्रोताओं को। आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी चैन को आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी में, जो कि मैं हमेशा आप सभी के बीच शो लेकर आती हूँ चांदनी का सफर। और ये सफर बेहतरीन बनाने के लिए बहुत सारा पटारा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, वैसे अलार्म ने आखिर आपको जगा ही दिया है ना, ऑफिस भी जा ही रहे हो, लेकिन दोस्तों बोर मत होए, क्योंकि मैं आपको बोर होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। क्योंकि अगले कुछ घंटों में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज, जिसमें न्यूज भी आप एंजॉय करेंगे, न्यूज भी सुनेंगे, फैक्ट्स भी सुनेंगे। हाँ, आज कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी यादें जो सीधी हमारे दिल तक पहुंचेगी। जी हाँ, वो मीठी मीठी यादों को अगर आप सभी ने सुनना है, बने रहना पड़ेगा आप सभी को मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। आइए सुबह सुबह इस ताजगी वाले मौसम में हम सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं कुछ खबरों के साथ। आज की न्यूज अपडेट है, सबसे पहले ब्रिस्बेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ब्रिस्बेन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए क्वींसलैंड रेल सिस्टम ने एक डिजिटल सिग्नलिंग अपग्रेड्स पर काम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे फ्यूचर में सफर और भी स्मूथ हो सकता है। आइए और भी अपडेट्स जानेंगे हम जरूर इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गिरता गि

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रेसवानी। आइए अगली न्यूज अपडेट जानते हैं। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक साल के आगे चल रही एलनीनियो कंडीशन से डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और ड्राई वेदर बढ़ने के काफी चांसेस है। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रेसवानी।

हाँ जी, एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए एक खुशखबरी है। वैसे तो मैं रोज ही आप सभी को खुशखबरी देती ही हूँ, लेकिन दोस्तों ब्रिस्बेन का पॉपुलर लाइव म्यूजिक इवेंट जो है Z51 अक्टूबर में रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में वापस आने वाला है। तो है ना खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी सुनते रहिए क्योंकि आपके दोस्त आरजे जाने जैन ऐसी खुशखबरियां लेकर आती रहती है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, आइए एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक को।

हाँ जी, क्या आप सभी ने कभी सोचा है, जब हम कोई पुराना सॉन्ग सुनते हैं या पुरानी चीज याद करते हैं तो हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, होता है ना? इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। हमारा दिमाग पुरानी यादों को याद करते वक्त और नए एक्सपीरियंसेस को जीते वक्त लगभग सेम एरियाज एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए तो बचपन की यादें या फिर पुराने गाने जैसे ही हम सुनते हैं, याद करते हैं, हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं। तो ये था हमारे दिमाग और हमारी यादों को याद करने वाला फैक्ट जो मैंने आप सभी से शेयर किया है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। वैसे दोस्तों आइए कुछ पुरानी यादों को याद करते हैं। वैसे एक जमाना था जब घर में सिर्फ एक टीवी होता था और रिमोट का असली मालिक यानी हमारे हेड ऑफ द फैमिली फादर यानी हमारे पापा होते थे, है ना। जब हमें कार्टून देखना था या फिर कोई दूरदर्शन में सीरियल देखना था उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। और जब लैंडलाइन बजता था तो पूरा घर चिल्लाता था, फोन उठाओ और देखो किसका है। सच में ऐसा होता था। और वैसे एक बात तो है, जब हम पुरानी चीज याद करें उस टाइम तो देखो ना मोबाइल होते थे, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम लैंडलाइन चलती थी और घर के जो छोटे बच्चे यानी कि हम जो होते थे भाग भाग के जाते थे कि हम फोन उठाए थे और उसमें भाई बहनों की लड़ाई हो जाया करती थी। दोस्तों वैसे कुछ भी कहो फिर भी ना उस टाइम पे रिश्तों में कनेक्शन फुल नेटवर्क पर चलता था। फिर उस टाइम चाहे व्हाट्सएप हो, नेटवर्क हो ना हो, रिश्तों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। सहमत हो ना मेरी बात से। तो ये लीजिए आज का सवाल आप सभी के लिए, आपको बचपन की कौन सी छोटी सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? फटाफट से अपने कमेंट्स लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप सभी के बचपन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वाकई ही आप बहुत याद करते हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

हाँ जी, ये जो भी आप सभी ने गीत सुना है पल पल दिल के पास, जो कि फिल्म ब्लैकमेल से लिया गया था जो 1973 में रिलीज हुई थी। इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि इस गाने की जो सिंप्लिसिटी है ना, इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज भी ये गाना हर जनरेशन को बहुत पसंद आता है और रेडियो पर बजते ही लोग साथ में गाने लगते हैं। जी हाँ, और वाकई मुझे पूरी बात पता है कि आपने भी ये गाना साथ साथ जरूर गुनगुनाया होगा। तो आइए इसके साथ सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो प्रिस्मानी।

जहाँ पर इतनी सारी बातें की है और चांदनी आप सभी के लिए एक थॉट ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लीजिए आपके लिए एक थॉट। खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी होता है, खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी अपने लोग और उनकी यादें ही काफी होती है। तो दोस्तों इसी मुस्कान और पॉजिटिविटी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। अपने परिवार को वक्त दीजिए, पुरानी यादों को हमेशा संभाल कर रखिए और हर दिन में एक वजह जरूर ढूंढिए मुस्कुराने की। खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाते रहें। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, रेडियो प्रसवानी। आपके अपने दोस्त जानी को हमेशा याद करते रहें और फीडबैक जरूर देते रहें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूके में ग्रूमिंग गैंग पर छिड़ी बहस, सांसद ने सुनाई पीड़ितों की आपबीती। ब्रिटेन में कथित ग्रूमिंग गैंग और संगठित बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में कई पीड़ित महिलाओं की गवाही पढ़ते हुए दावा किया कि वर्षों तक नाबालिग लड़कियों का सामूहिक रूप से शोषण किया गया और प्रशासन लंबे समय तक कार्यवाही करने में विफल रहा। लोव ने संसद में कहा कि ये गवाहियां उनके स्वतंत्र जांच अभियान के दौरान सामने आईं। उन्होंने सांसदों से अपील की कि पीड़ितों की आवाज सुनी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। बच्चों की सुरक्षा का जोखिम, फ्लोरिडा में ओपन एआई पर हुआ मुकदमा। फ्लोरिडा ने ओपन एआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अपने चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी। मुकदमे के अनुसार ओपन एआई ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। फ्लोरिडा ओपन एआई पर कानूनी कार्यवाही करने वाला अमेरिका का पहला प्रांत है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर ने फ्लोरिडा की अदालत में ये मुकदमा दायर किया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। किसी तीसरे की जरूरत नहीं, बालन शाह की मांग पर भारत का दो टूक जवाब। विदेश मंत्रालय ने भारत नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ये बयान नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भूमिका की मांग की थी। खुद को आइसोलेट करें, इबोला पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, भारत में अब तक एक भी केस नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एहतियात की सलाह जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में अब तक इबोला का कोई भी एक्टिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बीमारी के लगातार फैलने के मद्देनजर निगरानी और तैयारियां मजबूत कर दी गई हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

लीजिए परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह के पिता जनरल सिंह के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलन पार्क में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

जी हाँ दोस्तों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा कनेक्शन या संपर्क बना या ना बना हो दोस्तों, मैं बहुत रिमोट एरिया से बात कर रहा हूँ, और फिर भी चलो अच्छा गीत सुनते हैं, फिर मैं देखता हूँ, और अगर सब ठीक रहा तो फिर मैं वापस आऊँगा, ठीक है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग. बहुत से लोग मुझे कहे हैं कि हाँ, वी कैन हियर यू नाइस एंड क्लियर. चलो, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू फॉर गिविंग मी द फीडबैक. एक बार फिर आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. और चलते हैं, देखते हैं हमारे ब्रिस्बेन का वेदर क्या कह रहा है. दोस्तों, हमारा जो वेदर है आज के लिए, कहा गया है कि आज मौसम साफ रहेगा, कम से कम 13 और अधिक से अधिक 22, यानी 13 and 22 रहेगा. बारिश नहीं होगी दोस्तों. कल के लिए आज ही की तरह 13 रहेगा मिनिमम, बट मैक्सिमम 21 रहेगा. बारिश नहीं है. सैटरडे को सनी है दोस्तों, मिनिमम 10 डिग्री हो जाएगा. ओह माय गुडनेस, 10 and 22 रहेगा, नो रेन. और संडे को शावर्स और टू कहा गया है, मिनिमम 12 रहेगा, अधिक से अधिक जी हाँ 23 डिग्री, और थोड़ा सा कुछ बारिश होने की संभावना है. और मंडे को 14 and 22 रहेगा दोस्तों. ट्यूजडे को मंडे को कुछ बारिश होने की संभावना है दोस्तों, ट्यूजडे को भी, और 15 and 22 रहेगा. वेंसडे को शावर और टू कहा गया है, 15 and 21 डिग्रीज रहेगा. तो ये रहा हमारा ब्रिस्बेन का वेदर दोस्तों, और आप सुन रहे हैं ब्रिस्बानी, आपकी अपनी पहचान. और रास्ते में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी अभी आया है ग्रेंज रोड, जो ग्रेंज में मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है दोस्तों. एक लेन को ब्लॉक किया गया है, और नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स स्टेफर्ड रोड जो है, और साथ साथ में बस वही अभी आया है दोस्तों, और तो कुछ खास और नहीं है. तो चलो एक गीत सुनते हैं दोस्तों, फिर हम वापस आएंगे. और आप सुन रहे रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान. नंबर है 04300031701.

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना दिल है कि मानता नहीं। चलिए कुछ फिजी न्यूज सुनते हैं, इंग्लिश में है दोस्तों। आज राइजिंग प्राइसेस, रिजर्व बैंक ऑफ फिजी हैज वॉर्न्ड दैट इन्फ्लेशन कुड इंक्रीज इन कमिंग मंथ्स ड्यू टू हायर फ्यूल, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड रिसेंट इंक्रीज इन पावर टैरिफ्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट प्रेशर ऑन हाउसहोल्ड बजट्स। और नेशनल बजट कमिंग सून, फिजीज 2026 टू 27 नेशनल बजट विल बी प्रेजेंटेड ऑन 26 जून। अर्ली रिपोर्ट सजेस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैव बीन स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एंड द बजट डिफिसिट हैज नैरोड। स्कूल ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस, सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज गेटिंग टू स्कूल आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इन सर्टेन एरियाज सस्पेंडेड सर्विसेज। Communities are looking for temporary solution while authorities work on the issue. और चलो कुछ वर्ल्ड ब्रीफ्स में कहा गया कि ग्लोबल मार्केट्स आर क्लोजली वॉचिंग एनर्जी प्राइसेस, एक्सटेंशन इन सेवरल रीजन्स कंटिन्यू टू अफेक्ट ऑयल सप्लाईज। मैनी कंट्रीज आर रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी projects as they seek to reduce dependence on fossil fuel. तो चलिए दोस्तों, ये रहा कुछ समाचार आपके लिए। और चलो अगला जो गीत है, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेगी।

रशीद खान जी। हाँ दोस्तों, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं, और आप जानते हैं, कहते हैं कि द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैव द मोस्ट बट दोज हु अप्रिशिएट व्हाट दे हैव व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट दे वांट। तो हर पल, यानी कि हर पल आपको एंजॉय करना चाहिए, हर पल आपको देखिए। फिर वो जैसे क्या बताऊं मैं, समय चलता ही जा रहा है दोस्तों, रुकता नहीं किसी के लिए, तो ये बात याद रखे दोस्तों आप। जी हाँ, जो चला गया वो चला गया, फिर वापस नहीं मिलेगा आपको। और लता जी से जी ने ये गाना नहीं था, लेकिन उससे पहले ये गाना था, चलो इसको मैं देखता हूँ। जी हाँ, नीले नीले अंबर पर

और दोस्तों, आज अगर आपका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा, और हैप्पी बर्थडे, और अगर आपका कोई एनिवर्सरी होगा तो हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। और जैसे आप जानते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जी हाँ, अब थोड़ा मैं जाग गया हूँ दोस्तों। विनी प्रेम जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मैसेज किया कि हम एयर पर हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्या दोस्तों आप जानते हैं जो बटरफ्लाइज है ना, बटरफ्लाइज, वही बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाइज अपने पैरों से टेस्ट करती है। आपने नोटिस किया होगा ये बात, शायद नहीं भी किए होंगे। इनको कैसे पता चला मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों। जब वो किसी फूल या पत्ते पर बैठती है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो जो खाने लायक है या नहीं। या क्या बात है, चलो खास हम इंसान के साथ ये नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लता जी से इस गीत को आप सुनेंगे।

और स्पेशल बर्थडे कॉल आउट टू दादा कृष्णा भाई, आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी वाला जन्मदिन हो आपको, विश यू अ वेरी लॉन्ग लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ, और यही उम्मीद है। यू आर अ वंडरफुल मैन, जी हाँ, बहुत प्यारे व्यक्ति हो आप। और चलो, आपके लिए खास गाना है जो विनी ने चूज किया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा दोस्तों।

वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विनी. थैंक्स, आपने चूज किया था अपने हबी के लिए, और बहुत प्यारा सा गीत. आई नो ही लव्स म्यूजिक, मुझे तो ये मालूम है, लेकिन चलिए, बहुत अच्छा गाना था. और देखिए दोस्तों, कुछ जो ऐसे बातें हैं जो इंटरेस्टिंग हम कभी सोचते नहीं हैं. जैसे कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना चल लेता है कि वो लगभग 5 बार धरती की चक्कर लगाने की बराबर हो सकता है. कभी सोचा था आपने ये बात? नहीं. खैर चलो चलो, बंगाली गाना है दोस्तों, शायद आपको अच्छा लग रहा है. हेमंत कुमार ने गाए.

तो दोस्तों उम्मीद है गाना आपको, छोटा सा गाना था हेमंत कुमार ने गाया था, मैं बहुत कम कम समझा। अगर वहाँ पर है कोई सुन रहा है, अगर इसको बता सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। नंबर है 04-3003-1701। इससे इजी क्या हो सकता है दोस्तों, खाली आपको याद रखना है 3003, पीछे तो 1701 है ना। जी हाँ, तो चले कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए, और इस समय पूरा 8 बज गया है दोस्तों, और चलिए सुनते हैं इस गीत को। किशोर कुमार और लता जी से इस गीत को आप सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, इस समय 8:05 हो गए हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मिज़बानी, आपकी अपनी पहचान। अगला जो गीत है दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा गीत है और गीत का बोल है दो दिल मिल रहे हैं, कुमार सानू की आवाज़ में।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जी हाँ, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और कल कल मैं नहीं रहूंगा, कल नीलम के साथ आप रहेंगे दोस्तों, और शनिवार को भूलना मत परमा भाई के साथ। जी हाँ, अब तो जाग गया हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है। बस तुम इतना वादा करो, देखो ये तो शायद जब शादी भी करते हैं तो ऐसा वादा करते होंगे हम, बस तुम इतना वादा करो कि हर हाल में मेरा साथ दोगे, मुश्किल और आसान दोनों वक्त में मेरा साथ खड़े रहोगे। ऐसे तो कुछ है ना, मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गया दोस्तों, याद नहीं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

और देखिए दोस्तों, खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या क्या आया बताइए। जी हाँ, खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो आपके पास है और उसकी कदर कीजिए, और जो चाहिए उसे ले लिए और मन्नत कीजिए, ठीक है। और आगे कहा गया है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है कि नहीं? हर दिन हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता है। मुझे याद है कल कल किसी ने अपना गैराज डोवा को बंद कर दिया फिर कुछ और हुआ, मैं नहीं कहूंगा, सारा दिन कुछ ना कुछ होता ही रहा। उन्होंने कहा कि आज का दिन बिल्कुल बेकार गया। ऐसे ना, ऐसे नहीं बोलो, आप जीवित हो ना क्या बात दोस्तों, कभी काल ऐसे होता है, कभी हमारा दिन सही जाता है, कभी नहीं। तो कोई बात नहीं, दोनों को लेना पड़ता है ना, और साथ में लेकर चलना पड़ता है। तुम हमें जानो ना हमें जानो, ना तुम हमें जानो। मैं सोचा था मैं जाग गया हूँ, लेकिन नहीं,

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आज का जो चुने हुए गीत मैं लेकर आया हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत समय नहीं मिला था क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत स्टूडियो में नहीं हूँ दोस्तों। हफ्ता भर स्टूडियो में नहीं रहूँगा, लेकिन चलो आप लोग फिर भी कह रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मुझे इनकरेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप तो है हमारे ना, क्यों नहीं। चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, ये एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, जो मूवी आपको याद होगा, एक मूवी थी परदेस जो 1997 में रिलीज हुई थी। एंड उनमें एक बहुत प्यारा सा गाना है जो शायद आपको अच्छा लग जाए। इसे इसे गाए हैं सोनू निगम और हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन भी शायद इसमें हैं। तो चलो सुनते हैं इस गीत को। नंबर है 04, याद है मैंने कहा था 3003003 1701।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
11: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
14: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
13: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
14: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
13: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
15: और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेडियो ब्रिस्बानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और अगला जो गीत है, इसका मतलब यही होता है कि जो सिर्फ अपनी नज़रों और इशारों से मेरा दिल चुरा ले गया, बता ये अदा और ये हुनर तुमने कहाँ से सीखा। चलो आपको पता चल गया, जी हाँ, गीत का बोल कौन सा है। जी हाँ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। गाए हैं रफ़ी साहब और साथ में है आशा भोसले और ओपी नैयर के संगीत पर। इस गीत को आप सुनेंगे।

और दोस्तों देखिए, ऑलवेज स्टे हैप्पी. हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट. इट स्ट्रेंथन्स बोथ द बॉडी एंड द माइंड. ठीक है, तो बात को याद रखे दोस्तों. ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी. बुरा वक्त भी आए तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि नया वक्त वहां पर खड़ा हुआ है. जी.

जी हाँ, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, बहुत प्यारा गीत अभी आपने सुना पंकज उदास से। और चलिए अगला जो गीत है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाए हैं, पहला पहला प्यार।

और देखिए दोस्तों, कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माया गया ये बड़ा प्यारा सा गीत है दोस्तों। अगर आपने मूवी नहीं देखे तो देख लो, और एक रोमांस गीत है और आपको अच्छा लगेगा। आई नो यू लाइक इट। गीत का बोल है दीवाना हुआ बादल। आशा भोसले और रफ़ी साहब से इस गीत को आप सुनेंगे दोस्तों।

और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रेडियो प्रोग्राम सुना और अभी तक सुनते आए हैं और सुनते रहे हमेशा। और ब्रिजवानी की यही कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे गीत आपके लिए लाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए। तो चले दोस्तों, अब यहाँ बस मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। शायद मिलूंगा रविवार को, जी हाँ, 9 से 10 बजे, और अगर नहीं तो फिर मंडे को। तो सुनते रहिए दोस्तों, और इस गीत के साथ हम निकल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ लवली वीकेंड, और कल सुबह भूलना मत, आप हो जाएंगे नीलम के साथ और शनिवार को परमा भाई के साथ।